0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवेही एफएम दिवेही एफएम दिवेही नाइक
1: नुवदिह एके मेगाहर्ट्ज दिवेही एफएम
2: लवे कफ बहुत लवे

बिल तक दक्कन फसे है गोते मियोती फाही पे ऐप बिल तक अंगारा जुमला ददु फाही पे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महुरी हा बिल तक फैसा दक्का निमालम ही फोन फेंग गैस अधि मीडिया नेट बिलकस देख के ने रीलोड रास्टस नूनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेट देने मस देबा वायर बिल नु देखी गेंग लारी वीनु ये नेंगी गेंग उलेकर नुझे ने हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे माफ है

0: ufaver hayata kaddu huwafenta. Huri me tia khyaluga
1: mi loiper nimung annani kene to balaluma komme bududo gere tihagat sumineta intiza kollafa.
0: ऑडियो वाहक
2: तेहुं तरिंगे एमे मकबूल फन्नानुंगे लवथ एंगिनी की हावरक ए फन्नानुंगे मौदु मातेंगिनी की हावरक

0: Aamir Khan ge film akang emme furatama Filmfare Award Best Actor ge award enali buni kom film akum. Dil Raja Hindustani Lagaan.
1: Lagaan.
0: Ago ta nimmani ta.
1: Yes.
0: Yagi Best Actor Filmfare Award Aamir Khan ang emme furatama libuni Lagaan eti buni. Jawab nu ba.
1: Ee dil do.
0: Raja Hindustani. Raja Hindustani Aamir Khan emme furatama
1: Lagaan astu flop akabe do anin he. ekam mihuna var rite ichaga mihuni
0: lagaan ki critically var kamyab again dia film e lagaan ki rangal emi ma furtama sual is nubavi Aamir Khan nisho adu na happy ki tam me havis rangal kuriya dan inge devan sual Aamir Khan dehas evva naharuga mivani oscar yak nominate wefa me hama beru me hun ber fannanu na ekige namase ke kofa film dehas evana har ke film me film ke oscar nomine it ikhtiyari jab screen me no jab rangal me faru fawan ko dokon sor timan sawal andaz apna apna me film ga me cult film me hama vara boda maqbool ve kendya film me film ke me film ga Aamir Khan ko lunu character ge namaki ko ba prem bhopali teja amar manohar ekegamati prem bhopali degamati teja andaz apna apna tinegamati amar manohar
1: puratama
0: prem bhopali egota nimmanita jawab nu ba
1: ale rahu
0: jawab ki aman manohar
1: oh ema doge kan nege do adi nu edo Aamir Khan ge fan ka
0: adi nu e adi hama tankole dakkot inge ओके हाथरवाने सवाल थ्री इडियट्स का Aamir Khan के कैरेक्टर रांचोड़ दास एने के असलो नामकी को बाहे ये बनलते हैं रांचोड़ दास के रोल एना कोरुनी एकम का असलो एक ने फिल्म एने के नामकी हैं नामे एक और नामे कम बनलते हैं राजू रस्तों के फरहान कुरेशी पांसुक वांगडो
1: फुरतमना दो
0: हसीन Aamir Khan के फैन ना का
1: बुने वाले बस नहीं हैं ना एक हम कभी माँ बड़े का समाज का मैं नूदे भी ये
0: देख एक हम के नूला है को माँ को बोलो कैरेक्टर है ना पांच सौ वागनो ये जवाब बखे
1: आदि एम में सवाल की जवाब है रंगालो में कोई बुने तो
0: हमारे दाखोती दानी को बा अने सवाल जहिला माँ अने Aamir Khan दे जवाब रंगलो दे वन सवाल रंगलो वेज रंगलो रंगलो रंगलो देहा सोल वना हरु का दंगल नमक किया स्पोर्ट्स ड्रामा एक अमी Aamir Khan मेवानी कोड़े फा एन कोड़ोनी कौन रियल लाइफ रेस्लर एक कैरेक्टर है इख्तियारी जवाब तक कि महावीर सिंह पोगट केडी जादव सुशील कुमार
1: केडी कोच कंगे ना उले नहीं एका
0: ती रंगलो ती दानी एक मुक आदिस नुबा
1: जवाब
0: महावीर सिंह पोगट
1: दफाड़ गिना भी के एक माइकल देख
0: बाबीता पोगट आ गीता
1: देख मियां जाके फील में बदन याँ मियु जाके मर कुरे
0: मी गिना मी
1: गोपी ड्रामा एक याने को मैं अस्तु किया नहीं है ना मैं
0: आ एक एहम
1: मी हुन्ना है दिए मी है वनी अस्तु
0: एहम वेगिन ने नान तकुन्ने मी हुन्ना मी पुनी कैरेक्टर्स है मी हुन्ना मुहिम मुवानी हसीन हसीन ना फिल्म का स्टोरी के मुहिम मुवानी कुड़ो को फेन का वन्या एन कुड़े कैरेक्टर्स बाला ला
1: एहम मी है के बुने बुनना मोइस मी मोइस करने के दो कम Aamir Khan ना सुखा मुदा नहीं
0: है आ इंगे इंगे ओके Aamir Khan कोले उन फिल्में इन्ना ने ना हंदार ने ते बाली जहे फिल्में ये फिल्म के नाम की कोबा
1: माँ गजिनी
0: जवाब रंगल जवाब रंगल ओके देंगिन सवाल Aamir Khan विवानी सोशल इश्यूज तक टारगेट को सीरीज टॉक शो एंग हदाफा ये शो के नाम की कोबा तो बने होते हैं आपकी अदालत सत्य में विजेते कॉफी विद कारण
1: फुरतम की कुछ किता
0: आपकी अदालत सत्य में विजय थे जवाब नो बे
1: आपकी अदालत की एक आओगे चे
0: ये मी ही किच्छे
1: एक हम उन्ने शोए दो हैं हमारे
0: उन्ने शोए हैं
1: Aamir Khan की फील्ड में है बुनी
0: अहा ये Aamir Khan ना गुड़ूं हुरी मसे के तर का Aamir Khan के कोई जो हम मसले नो मी की हसीन तैयार नोए थी ये हम इंगे एम में पहुंच सवाल
1: फाहे बिस नो भी
0: है ना आ Aamir Khan ना मिवानी ವರಂ ಹಾಸ ಲಗಬೆ ದೇಹಾಸ್ ದಿಹವಣ ಅಹರು ಅರುವಾಫ ಏ ಸರುಕಾರುಂದೆ ಲಗಬೆ ಏಕೊಂ ಎವೋಡೆಕ್ಕ ಮುಣಲ್ದೆಂವಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ್
1: ಪದ್ಮಶ್ರೀ
0: ಜವಾಬು ನೋಬ
1: ಪದ್ಮ ಏಗೆ ಇನ್ನಾನೆ ಮಿಹಾರು ಮೀ
0: ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಏನಲ್ಲಿ
1: ಬುಣಿ ದೇಹಸ್ ದಿವಣಹಾರು ದಿಬುಣಿ ದೇಹಸ್ ತಿವ್ವಣಹಾರು ದಿಬುಣಿ ಅಣೆ
0: ದೇಹಸ್ ತಿವ್ವಣಾರೆ ನುಷ ಹುಬಿ
1: ಏ ತಸು ರಂಗಳು ಕಂ ಬದಾಯಿ ಗೆ ಆಹಾರು ನುಬಾವಿ
0: ಆಹಾ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಏ ತೆಂ ತಿ ಬದಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್
1: ರಸ ಕರಾವಿ ಅಸಲ
0: ಆ ಮೇ ಹಾನಕ ನು ನು ಅಣೆ ನು ಅಣೆ ವರೆ ನು ಅಣೆ ಮೀ ವರೆ ದೇರ ಮಸಲೆ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಫೇನ್ ನಕ ಕಿಯಾಗೆನ್ ತಿ ಉಳೆಂ ಫೆಶಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಕೋಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇ ಬಲಾಗೆ
1: ತಾರೆ ಸಮೇ ಬರು ಬೇದನೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್
0: ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ಗೆ ಲವೆ ಹಾರ್ಮ ಆಡುವ ಹಾಲಾಣೆ